0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। टोक्यो के मशरक में वाकई चिबा प्रिफेक्चर में हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड शदीद बारिश के बाद 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उनका कहना है कि एक शख्स लापता है। हुक्काम के मुताबिक 130 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उनका कहना है कि ज़ेरे आब आने वाले घरों में से 1489 घरों में पानी फर्श की सतह से नीचे रहा, जबकि 1206 में फर्श की सतह से ऊपर आ गया। हुक्काम का कहना है कि बुध की दोपहर 1 बजे तक 59 अफराद बल्दियात की जानिब से नामजद करदा इनखलाई मराकज़ में मुकीम थे। ज़ेरे आब आने के बाद शहर की सड़कों पर छोड़ी गई तकरीबन 2500 गाड़ियों को मुंतकिल करने का काम जारी है। छोड़ी गई गाड़ियों से निपटने के लिए मंगल को एक प्रोजेक्ट टीम तश्कील दी गई। इसमें प्रिफेक्चर, चिबा शहर और मरकजी हुकूमत के साथ साथ गाड़ियां खींचने वाले ट्रकों की सनद के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये टीम गाड़ियों के मालिकान की शनाख्त करेगी और इन्हें ले जाने की दरख्वास्त करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ICC के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर रही है। इसकी जानिब से सदर मोहतरमा अकाने तोमोको समेत अदालत की क़यादत पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अकाने एक जापानी जज हैं जिन्होंने 2024 में ओहदा संभाला था। अमरीकी वजारत खारजा ने मंगल के रोज़ वजीर खारजा मार्को रूबियो का एक बयान जारी किया। इसमें ICC को बदउनवान और तबाहकुन हद तक सियासतज़दा करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अदालत अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। इन पाबंदियों में अमरीका में मौजूद किसी भी असासे को मुंजमद करने पर जोर दिया गया है। वजारत खारजा ने यह भी कहा कि वो उस वक्त तक मज़ीद कार्रवाई करने के लिए तैयार है जब तक कि ICC अमरीकी खुद मुख्तारी को मज़ीद ख़तरे में ना डाल सके। अमरीकी हुक्काम ने अदालत की जानिब से अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात की मंजूरी पर एतराज़ किया है। उन्होंने मुबैना जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत भी की है। हुकाम ने इन मुकदमात में मुलविस जजों और इस्तगासा पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ICC की जानिब से पाबंदियों पर तनकीद की गई है। इसने कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचेगा और बैनुल अक्वामी कानूनी नज्म खतरे में पड़ जाएगा। अदालत का इसरार है कि वो आज़ादाना तौर पर काम करती रहेगी। गैर मुल्की बाशिंदों को जापानी ज़ुबान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उसूलों ज़वाबित सीखने में मदद फराहम करने के एक नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जापानी हुकूमत ने मंगल के रोज़ माहरीन के एक पैनल का पहला इजलास मुनक़िद किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिसमें लोग हमवार तरीके से जापानी मुआशरे के साथ मुताबिकत पैदा कर सकें। काबीना दफ्तर में गैर मुल्कियों के बारे में पॉलिसी के इंचार्ज वजीर मुमलिकत सुजुकी हयातो ने कहा कि समाजी शमूलियत पर मबनी मुनज़्ज़म और जामे मुआशरे के क़याम के तनाजुर में इस प्रोग्राम का क़याम एक अहम मामला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका हदफ एक मुअस्सर मंसूबा तरतीब देना है। ये प्रोग्राम अमूमी तौर पर दरमियानी से तवील मुद्दती रिहायशियों का अहाता करेगा। ऑनलाइन सीखने का माहौल जापान से बाहर भी दस्तयाब होगा। प्रोग्राम के मवाद और मतलूबा शुरका के साथ साथ रिहायशी हैसियत की जांच पड़ताल में नतायज की अक्कासी करने का तरीक़ाकार भी इजलास के मौजूआत में शामिल था। पैनल ने तस्दीक की कि इस प्रोग्राम को माली साल 2028 में शुरू करने के मकसद से बातचीत जारी रखी जाएगी।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 19 अगस्त बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि अमेरिका के साथ जारी वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को वॉशिंगटन के अनुरोध पर अवधि कम करते हुए शुक्रवार को समाप्त कर दिया जाएगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास सोमवार से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलने वाला था। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बुधवार को घोषणा की कि अब इसकी अवधि लगभग आधी कर दी जाएगी। यह अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित किए जाते हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि जमीनी अभ्यासों में कुछ कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह घोषणा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रविवार को पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफी हद तक कम करने का आदेश देने के बाद आई है। ट्रंप ने कहा कि ये अभ्यास उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भेजते हैं। दक्षिण कोरियाई मीडिया का कहना है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ जवाबी हमले की स्थितियों पर आधारित प्रशिक्षण रद्द कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया इस तरह के प्रशिक्षण की कड़ी निंदा करता आया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी का कहना है कि पहले से शुरू हो चुके सैन्य अभ्यास का समय से पहले समाप्त होना या उसमें कटौती होना अभूतपूर्व है। दक्षिण कोरिया के पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई है कि इस नवीनतम कदम से अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा स्थापित प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो सकती है। अमरीकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ इस शरद ऋतु में ही बैठक कराने का दबाव डाल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को अमरीकी सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह खबर प्रकाशित की। रविवार को राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के बाद यह बात सामने आई है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के पैमाने को घटाने का आदेश दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान की गई कूटनीति को पुनर्जीवित करना है, जब उन्होंने किम को उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बैठक नवंबर में ट्रंप की अगली एशिया यात्रा के दौरान हो सकती है, जब विश्व नेता चीन के शेंजन में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई योजना नहीं बनाई जा रही है, लेकिन किम के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक की राष्ट्रपति की इच्छा से पता चलता है कि ईरान पर जीत अब भी दूर है। ऐसे में ट्रंप विदेश नीति में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्सुक है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 से 2019 तक किम से 3 बार मुलाकात की थी, लेकिन दोनों पक्ष उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर मतभेदों को दूर करने में विफल रहे। तब से उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में काफी विकास हो चुका है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर के अधिकारियों का कहना है कि पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी वर्षा के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। अधिकारियों का कहना है कि 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। उनका कहना है कि 1206 मकानों के फर्श डूब गए हैं और 1489 मकानों की नींव में पानी भर गया है। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार दोपहर 1 बजे तक नगरपालिकाओं द्वारा निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में 59 लोग रह रहे थे। शहर में बाढ़ के कारण सड़कों पर खराब हुए लगभग 2500 वाहनों को हटाने का काम चल रहा है। मंगलवार को इन वाहनों से निपटने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया। इसमें प्रीफेक्चर, चिबा शहर और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ साथ क्रेन से वाहन उठाने वाले लोग भी शामिल हैं। कार्यदल वाहनों के मालिकों की पहचान करके उनसे वाहन हटवाने का अनुरोध करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रहा है। वो न्यायालय के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें अध्यक्षा अकाने तोमो को भी शामिल हैं। अकाने एक जापानी न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2024 में पदभार संभाला था। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वक्तव्य जारी किया, जिसमें ICC को भ्रष्ट और राजनीति से बुरी तरह प्रभावित बताया गया। साथ ही अदालत पर अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। प्रतिबंधों के तहत अमरीका में स्थित ICC की परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक कि ICC अमरीकी संप्रभुता के लिए खतरा बना रहेगा। अमरीकी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों द्वारा कथित युद्ध अपराधों की जांच को अदालत द्वारा मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने युद्ध अपराधों के कथित आरोप के तहत इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की निंदा की है। उन्होंने इन मामलों में शामिल न्यायाधीशों और अभियोक्ताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। ICC ने प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून का शासन कमजोर होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उसने जोर देकर कहा कि वो स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा। जापान सरकार ने मंगलवार को एक विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें विदेशी निवासियों को जापानी भाषा और दैनिक जीवन के नियम सिखाने में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे विदेशी निवासी जापानी समाज में आसानी से घुल मिल सकें। विदेशियों से संबंधित नीति के प्रभारी कैबिनेट कार्यालय के राज्य मंत्री सुजुकी हायातो ने कहा कि एक व्यवस्थित और समावेशी समाज की स्थापना के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम की स्थापना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य एक प्रभावी योजना तैयार करने का है। ये योजना मुख्य रूप से मध्यम से दीर्घकालिक निवासियों पर लागू होगी। ऑनलाइन शिक्षण सुविधा जापान के बाहर भी उपलब्ध होगी। इस बैठक में कार्यक्रम की विषय वस्तु और लक्षित प्रतिभागियों के साथ साथ निवास दर्जे की जांच में परिणामों को कैसे शामिल किया जाए जैसे विषयों पर चर्चा हुई। समिति ने पुष्टि की कि वो वित्त वर्ष 2028 में कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से चर्चा जारी रखेगी।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा प्रीफेक्चर में पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी वर्षा के बाद 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। साथ ही 130 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।